0: मोर जने जिदिया पड़ोसी अछि पूरा कॉलोनी सोलर पैनल लगाई सालेनी किंतु से मानिबाकु प्रस्तुत नथिले सतरे बिजुली बिल जीरो आसी पारे मु कहली पुओ ना हेउछि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना तापरे जण जण करी समस्तंकर बिजुली बिल जीरो आसीबाकु लागिला तापरे कहिले एबे लगाइबाकु ही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई पंजीकृत करंतु pmsuryaghar.gov.in हर घर सूर्य घर
1: म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटेक दिल सही दिल तक रेने छे छे आपन के सहित आले छे डायलिन लाइव चिटचैट शो आपन माने सीधा सड़क हम सहित कथा हो छंती हम टेलीफोन नंबर 0671203153 तबे टॉपिक टी रही छी वर्तमान खरा गरम गुड़गुड़ी समय रे आपन को जदी टिके सुजग मिलबो ठंडा जगह को बुलीबा को जीबा पई आपन को जगह चूज करबे देखिबा नेक्स्ट कॉलर के हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटेक
2: जय जगन्नाथ नमस्कार
1: जय जगन्नाथ नमस्कार
2: किए कहते एजीओ स्टाफ हाईकोर्ट कटक
1: आपको स्वागत शुणुची कौन कह टॉपिक संपर्क
2: आज टॉपिक संपर्क मुझे कह चाहे सकल तीर्थ तो चरण बद्रिका जी कि कारण मान प्राय पुरी ही जाए
1: मुठ
2: जाए किंतु जोटो आम अच्छा बद्रीनाथ सिंहनाथ रामनाथ सब रही प्रभु आम बारत वर्ष
1: मुझे
2: आह्वान कर दिए जो ठाकुर पूजा करे
1: अच्छा
2: मुझे आह्वान कर दिए जहाँ की मो पाखे पाखे आसी जाने से समय
1: बहुत बढ़िया
2: आज गोटे तीर्थ जगह अच्छी मो गां पाखे अच्छी जो खोर्धा जिला बोलगढ़ ब्लक गोटे अच्छी आम आरिकमा ग्राम डिपो साहि गोटे जगह से माँ कुशासिनी पीठ अच्छा बहुत बढ़िया जगह अच्छा
1: माँ
2: बहुत बड़ जगह बहुत बड़ बड़ सी मीटिंग हुए बाहर बाहर फाहर सब विभिन्न प्रोग्राम बहुत बढ़िया जगह से
1: आ
2: गोटे खाली जस्ट खाली टी ठाकुर गोटे श्लोक पढ़ी थी आज बहुत बढ़िया जिनसे आप शुणी से तथा दि तीन मिनट लगे सरिया मुझे आप शुणु टी नम नारायण रामकृष्ण दामोदर केशव अनंत हरिदेव चक्रधर गोपाल गोविंद गोपीनाथ नंद सुत मुकुंद मुरारी वसुदेव अच्युत कृपाणु मधुसूदन कंसरी वामन मात कुंड देवकी नंदन जनादन बलिधुंति जगत ईश्वर दईतारी मुक्त जशुजा कुमर विष्णु चतुकुल श्रेष्ठ अदित कुमर बनवाड़ी भूषि श्रीपति श्रीधर अक्षय संसार नाथ

0: म्यूजिकल और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे चली छे डायलिन लाइव चेटचाट शो। आज रो टॉपिक रही छे वर्तमान जो खरा गरम गुड़गुड़ी ए समय गोटे ठंडा जगह को बुले जीवा पई आपन को जदी सुजोग मिलिबो ताहाले आपन को जगह चूज करबे। सीधा सड़क भाव में आमको जन पारे आम टेलीफोन नंबर 06712303153। कलर को हेलो
1: अशोक पंडा मधुपटना कटक
0: आपन को स्वागत जनाऊ कौन कह टॉपिक संपर्क करे
1: भक्ति डोरी रे बांधी विरे तोते तो मोर मयूर चंद्रिका जीवन रमा अंधकार तू तो मोर आलोक बर्तिका मुरी सहर को जीवाक चाहिए प्रभु श्रीजगन्नाथ को दर्शन करने को चाहिए आनंद बजार भिड़े अभड़ा खावाक चाहिए एवं बेलाभूमि समुद्र बेलाभूमि शांत भाव में बसिकी ढे गणी
0: इत्ते इत्ते भावना आपण को मन भीतर अच्छे सुंदर भाव आपण महाप्रभु को पाख को आमको नहीं गले एमती गोटे सुजोग आपण को खूब शीघ्र मिलू आपण जानतो जगन्नाथ को दर्शन करके

नमस्कार श्रोता बंधु शुभ सकाळ आपण माने सुनुछंते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक को आज हेउचे शनिवार इंग्रजी तारीख 4 तारीख जुलाई मास 2026 मसिया 1948 सकाब्द मास आषाढ़ 13 दिन एवं आज हेउचे इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स एवं आमर समस्त श्रोता बंधु मानंकु स्वागत जणै आमे आरंभ करूछु आज सकाळर अधिवेशन कार्यक्रम आम केन्द्ररु सुनुछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक तेल से दिल तक देवमैत्र आछि आपण मानंकु सहित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य

0: क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केन्द्रीय गृह सचिव और केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दिल दाखरे समय वर्तमान भावभक्ति भरा कार्यक्रम अर्घ्य थाली को आपणों को पाखरे परसि देवार हाँ ए समय रे सारा ओडिशा एवं समस्त ओडिशावासी को हृदय रे गोटिए भावना भरे जाय छि जे हम कालिया शांत अनवसर घरे विश्राम नेउछन्ते देवस्नान पूर्णिमा परे महाप्रभु असुस्थ होइथिबार पारंपरिक विश्वास भक्तमानंक मनकु टिके व्याकुल करे हाँ सतरे आजि प्रत्येक भक्तंक उठरे गोटिए प्रार्थना हे प्रभु आपण शीघ्र सुस्थ हुअन्तु आपणंक दिव्य नवजौवन वेशर दर्शन पाइ आम आखि अपेक्षा करि रहिछि यथाशीघ्र आपण सुस्थ होई जांतो एपटे श्रीक्षेत्रर बड़दाण्ड धीरे धीरे साजि उठिछि महाप्रभुंक रथयात्रा पाइ तीन रथ नंदीघोष तालध्वज दर्पदलन नुआ रूपरे प्रस्तुत होउछि कारीगरंक हातरे काठ कथा कहुछि आउ रंग छुआरे से पाउछि नुआ जीवन हाँ आउ जेमिति बड़दाण्डर प्रत्येक इंची कहुछि आस प्रभु आमे प्रस्तुत तुम पथ चाहि सत कथा जगा प्रेमरे जे पड़िछि जगार आखि को जे चाहिछि से हृदयरु ताको भल पाइ बसिछि से कला कान्हो से कला ठाकुर तापाई जेते श्रद्धा जेते भक्ति भीतर आसिले भी नियंत हो जाए हे प्रभु हे कला दियो हे कला ठाकुर यथाशीघ्र सुस्थ हो जातो आम आपणक अपेक्षार अच्छा

सदृश आसरे बसिथिबा परि अंकित हेथिबा चित्ररे समस्त दिय चतुर्हस्त एवं दुई पाद विशिष्ट होइ पद्मासनरे बसिथान्ते। बलभद्रंकर कळबर श्वेत वर्णरे एहा चित्रित हेथाय। चतुर्हस्तरे से धरिथान्ति शंख चक्र गदा हळ हरिद्र वर्ण। सुभद्रा दुई ऊर्ध हस्तरे पद्म धरिथान्ति एवं निम्न हस्त दुईटी थाए बरदा मुद्रारे। आ कला रंगरे चित्रित जगन्नाथ चारि हातरे शंख चक्र गदा पद्म धरिथान्ति। समस्त देवतांकर पृष्ठपट गाढ़ नाली रंग हेथाय। हाँ अनसर पटी तीनोटी को वंशानुक्रमे केतक चित्रकर खूब निष्ठार प्रस्तुत करिथान्ति। चित्र करिबा समय तक सेमाने निरामिष भक्षण करंती एवं काम चलिथिबा कोठरी को स्त्री लोक मानंकर प्रवेश निषिद्ध थाए। चित्र पई धळा रंग शंख चूर्ण रु प्रस्तुत हेउथिबा बेले कळा रंग निमन्ते पोलांग दीपर कळा हिंगुळीर नाली आउ हरिथाळरु हळदिया आउ खंड नीळरु नील रंग प्रस्तुत कराए। स्नान पूर्णिमा दिन गभीर रातिरे बाइद बाजना सह चित्रकार माने अणसर पटी मानंकु मंदिर को आनंदि एवं आषाढ़ प्रतिपदारु अमावास्या जाए एक पक्ष व्यापी एही पटी देवतांक आगरे भोग पढ़ा जाए। हाँ सतरे आम कला ठाकुरंकर लीला अपार। से लीला को किए बा बुझिबो आमे तो छार मनुष्य मात्र।

ट्यून करी छंदी आपण माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कोन दिल से दिल तक रेडियो मित्र आशा आपण का सहित वर्तमान समय 17:04 एवं आज आपण माने कोन सुनी पारिबे प्रोग्राम आम केन्द्र रो निहत भाबरे आपण को कहि रखु छी आमर स्वास्थ्य रहि छी 17:10 रे आपण मानन को पई एवं एथिरे रहि छी ब्रुकक अक्षमता आलोचक रहि छंती डॉक्टर विवेकानंद कर एवं 17:25 रे रहि छी शुभ सकाळ मॉर्निंग मेलोडी रहि छी 8:30 रे एवं सकाळ 9:00 एवं संध्या 5:02 रे रहि आपणक लागि ड्रायल इन लाइव चिट चैट एवं परिपरि रही छे सकाळ 10:00 एवं राती 10:00 रे आपणकर अनुरोध भरा गीतर कार्यक्रम रेनबो एसएमएस कलाकार आपण माने सुनि पारिबे दिन 11:00 समय रे एवं साप्ताहिक इंग्रजी कार्यक्रम स्टम्पेड सुनि पारिबे दिन 11:30 रे जहां रिले करि प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो एवं दिन 12:00 रे सुनि पारिबे किछि कथा किछि गीत आज चर्चा रे रही छे 10:00 रे एवं एथिरे निर्धारित विषय रे निजर मतामत आपण एसएमएस बा व्हाट्सएप माध्यमरे शेयर करि पारिबे अपरन्न 2:45 रे सुनि पारिबे केतरी ओडिया चलचित्र गीत एवं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी सुनि

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही करता है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

सुनिश्चय प्रमाणे देव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले सुबह सकाल आम कथा हो जुलाई मास को नीके जुलाई मास रे प्रकृति नुआ रंग रे रंगे हवा आरंभ कर दे था प्रत्येक शेष पर गोटे नुआ आरंभ आसी था बोली ए जुलाई आम कान पाखे जमी मंत्र देगला भली कहीदे जाए हाँ बर्षार प्रत्येक बुंद

0: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की मौसम विभाग ने गुजरात गोवा महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन रेलवे सड़क नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई पैकेजिंग टेक्सटाइल ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा इस चरण से एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी जितेंद्र द्विवेदी आकाशवाणी समाचार जोधपुर
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं

0: और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000

0: फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ते लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ते ने संघ के सह कार्यवाह

0: दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा सात चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है, बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नौ आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला तीन तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat Anti-Terrorist Squad arrests eight people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro

सुन चुके प्रमाणे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक दिल से दिल तक रे सब वर्तमान स्टूडियो खड़ी 9:45 एवं आरंभ हो जाए आपण मानकर फेवरेट शो डायल इन लाइव शो

0: हाँ, पाखे आसुचि रथयात्रा एवं अणसर घर अच्छा आमर महाप्रभु महाप्रभुंकर आरोग्य कामना निमन्ते आमे समस्ते प्रार्थना करुचे। हे महाप्रभु, शीघ्र सुस्थ हो फेरी आसतु एवं अपलक नयन में पुणी चाह रुहंतु आपणकर भक्त वृंद को। सतरे ओडिया जाति सबुबले गर्व करे तार कलादियंक पाई, तार महाप्रभु जगतर नाथ कोटि ओडियांकर मौढ़मणि श्री जगन्नाथंक पाई। तबे आज आपण माने मते कॉल करंतु ऑन द नंबर 0671230315 रे एवं शेयर करंतु महाप्रभुंक प्रति आपणक भक्तिर गोटे छोट कहानी सुनांतु निहाते भाबरे जणांतु। आउ थरे नंबर टी कहि रखुची 0671230315 रे कॉल करंतु एवं शेयर करंतु महाप्रभुंक प्रति आपणक भक्तिर गोटे छोट कहानी। आसंते देखिबा आजर अमर प्रथम कॉलर किए अछंती आ सी कण कहउछंती। हेलो,
1: नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार, जय जगन्नाथ। किए कहउछंती, कोट कहउछंती?
1: आबास कोची टाटा स्टील प्लांट।
0: अच्छा, महाप्रभु को प्रति आपनक भक्ति रे गोटी छोट कहानी हमको सुनांतो।
1: आजी आपा आ बहुत किछि वो अच्छी जगन्नाथ पुराण रे जेतु गोटी छोट स्टोरी होची।
0: हां,
1: इतले महारानी लक्ष्मी गले सिया चंद्रन साई घर घरे एकर 12 रे गुरुवार जो पति गुरुवार सर्दार जाती बुले
0: बुलिया
1: जगन्नाथ पूरा बारण करते जाति सियाचंद्री आम जीव कि कथा मु पति गुरुवार दिन मोर गाँ
0: जड़ित मान आपण जीवन किसी कहानी अच्छी महाप्रभु को लेकिन किसी श्रद्धा किसी भक्ति कहानी के आपण सहित तो से विषय जनवाक मुझे
1: जगन्नाथ बहुत भक्ति
0: कैसे
1: सब नन ओडिया जगन्नाथ प्रेमी दी टाइम पूजा अर्चना करती बहुत स्नेह सदैव करती जगन्नाथ महाप्रभु को जेहेतु आरोग्य देवत जगन्नाथ तो बहुत भक्ति सहित पूजा अर्चना करू
0: तो ये स्नेह श्रद्धा सब बेले महाप्रभु थाउ आम समस्त मिसे प्रार्थना करवा महाप्रभु शीघ्र सुस्थ हो
1: जाए। जो मेसेज प्रोग्राम कर चार पांच मेसेज छाड़ दौर अन्न सहित घंटा बस अपेक्षा कर बहुत मन कष्ट लगुच दिन हम मुझे आर पूरा ओपनिकी बहुत मान खराब भाव जी आज आज आड़ कौन
0: निहत भाव में आपण मैंने कल करें अन् द नंबर 0671230315 रे एवं शेयर करें आपण कथा मो सहित। आउ हाँ, प्रति प्रोग्राम रे आमे सब बेले चेष्टा करै थौ समस्त मेसेज को स्थान देबा पई किंतु समय कम थाए गीत रिक्वेस्ट आम पाखे बहुत अधिक थाए किंतु आमे से सब किछि स्थान देबा पई चेष्टा करू एवं आपण को भी धैर्य सहित अपेक्षा करबा को पड़िबो। आमे आपण को जितिकी भल पाइबा दउछु आपण को ठीक हमको सेतिकी भल पाइबा नहले नाही किंतु सम्मान त निहाति दबा को पड़े सब मनुष सम्मान को खोजि थांती तो आमे समस्त भल पाइबा सूत्र रे बंधा आपण माने सब बेले आम सहित जोड़िए कि रहंतु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे। आओ हां, आपण माने कॉल करि परिबे ऑन द नंबर 0671230315 रे एवं शेयर करि परिबे महाप्रभु का सहित जड़ित आपणकर किछि भक्तिर कहानी निहाति भावरे सुनांत। चलंत देखिबा हमर नेक्स्ट कलर के आछंदे ओ से कोन कहउछंदे। हेलो, किछि कथा नै कॉल टी कटि जाय छी किंतु आपण मानकर कॉल निहाति आसीबो एंड चलंत देखिबा कथा सरणी किंतु कॉल आस जाय छी हमर नेक्स्ट कलर के आछंदे।

0: सतरे तुम ही नाथ तुम ही जगन्नाथ तुम्हें प्रति भक्तंक हृदय नाथ सतरे ना मु सुदामा ना मु सालपेक तोसी भी तुम मन क्यों जन्मरे क्यों पुण्य बड़े से होइथिले धन्य किछि लोड़ा नहीं जीवन रे मोर तुम आशीर्वाद थाउ धरी था हाथ देखाओ सुपथ जीवन मो धन्य हेउ इच्छा मते जहा देछ प्रभु सेतिकिरे शांति अछि अधिक आशा मु करू नहीं मोर लोड़ा नहीं आउ किछि शेष जाए तुम दया रही था मो निवेदन सार्थक हेउ मो मनीष जन्म जीवन हेउ धन्य जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी को नहीं आपणकर अनेक अनुभूति आपण माने मो सहित शेयर करुछन्ते चलंतु देखिबा हमर नेक्स्ट कलर किए अछन्ते ओ सी कोन कहुछन्ते आजर टॉपिक को नहीं। हेलो
1: मैडम आज्ञा
0: नमस्कार के कहुछन्ते कोट कहुछन्ते
1: नमस्कार आज्ञा मु राजेंद्र नाना कहुछन्ते प्रभु जगन्नाथ विषय पचारतन्ते त मु सुनिली मु कहली
0: अच्छा
1: पूर्ण चंद्र पूर्ण ब्रह्म
0: हां हां
1: पूर्णांदी पूर्णेंदु मानंद जगन्नाथ एक प्रकार क्षमता जन जीव को प्रदान कर देखिले रथे तुम बामन दुष्टा पुनर्जन्म न विद्यते ओम नमो भगवते जगन्नाथाय बामन नारायणाय नम के कथे जिते बड़ दाण्डे बर्तमान नारायण बेचक पचारे भाव पूजा पाउंटे रूप को देखिले मनीषर शक्ति साहस वृद्धि प्राप्ति
0: अच्छा आपण जगतनाथ जगन्नाथ को लेकिन कौन अनुभूति अच्छे कहतु
1: प्रभु

नमस्कार रेडियो एंड देवमित्रा मैम आपणंकु मध्य प्रति नमस्कार लिखुचंदी रेडियो मीन्स ऑल बिलोंगिंग्स इन फ्रंट एंड बैक ऑफ रेडियो रिक्वेस्टिंग सॉन्ग इज बरसोरी मेघा मेघा फ्रॉम फिल्म गुरु एवं डेडिकेट करुचंदी रेडियो परिवार को निहाती भाव आपणंक मनपसंद गीत मुझे आपको श्योर शुणी ताल चलत बिल्कुल भी लेट न कर सुनी ना बैक टू बैक ये दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक को

सुनिश्चित अपन माने देव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कार्डक दिल से दिल तक शो चाल छ रेनबो एसएमएस रा प्रेम से तो बले ही न थाय जब की हटात की सुंदर लागे प्रेम से तो बले हुए जत बले से तमर आदत पा अभ्यास हे जाय दिन ता बिना अधरा लागे और लाइफ रे किछ ना किछ ता बिना मिस लागे हां प्रति कथा रे प्रति भलो रे मन रे से थाय किछ भलो मोमेंट प्रथमे ता सहित शेयर करबा पाए मन चाहे किछ समस्या रे बस ता वॉइस सुनी देले जिमती लागे समस्या रे एठी टळै छिबो केवल ताको तमे केवल ताको पसंद करनी तमे ताको भलो पाए बसे था कारण प्रेम चेहरा देखी हुए नी प्रेम तो तुमर आदत बा अभ्यास पलटी जाए था चलते देखा परवर्ती एसएमएस किए कौट कर एसएमएस आसुची उत्तमपुर पोस्ट कटक रु सुभद्रापुर आसुची लेखुचंती आम पाखक हेमंत कुमार महाराणा एवं सुनिबा को चाहिचंती मेघ बरसिला टुपुर टुपुर गीत टिको सुनिबा को चाहिचंती शेष श्रावण रु निहाति भाबरे आपनका मनपसंद गीत देवमित्र आपनका पाई प्ले करि देबो परवर्ती एसएमएस आडो को बढिबा नेक्स्ट एसएमएस के कोठ लेखिचंती एही एसएमएस करचंती टुकु टापू बापू चिकू पापू शिवानी टिक्की मिक्की माणिया बंध संतरावाली बडंबर सुनिबा को चाहिचंती तो चलु बॉर्डर चलचित्र रु निहाति भाबरे आपनका मनपसंद गीत देबो मित्र आपन को सुनेबा ताले चलन तो बिल्कुल भी लेट न करी सुनिनवा बैक टू बैक ए दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक को

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छी केछी कथा केछी की था। हां साथी वर्षा छिटारे थाए गोटे अलग प्रकार आनंद हल्का पवन जेते बळे वर्षार छिटा मुह को स्पर्श करे ना मन अजणा खुशी रे भरी जाए। ए छोटे छोटे पानी बुंदा रे मनीष मनरे थिबा दुख कष्ट ओ क्लांति रो दूर मध्य हो जाय थाए। जेमिति कि वर्षा छिटा आमको सिखाए जे छोट छोट खुशी ही जीवन को सुंदर करी थाए ना।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकटक दिल से दिल तक सुजादा अच्छा अपन मन का सहित सो चली छि किछि कथा किछि गीत साथी ए वर्षा छिटा माने केवल आकाश रु पडुथिबा पानी रो किछि बुंदा नहि एहा

वेलकम ब्याक वन सेकेंड ट्यून करछुंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम डेनमार्क एक दिल तक सजाता अछि आपण मन का सहित सो चली छि के छि कथा के छि गीत हां साथी सही वर्षा छिटा सहित हमर शैशवर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई

0: गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development.

तेबे साथी या भितरे आम पाखरे आउ जने श्रोतांकर मध्य मेसेज टी आसी पहुंची जायछि। से लिखिछन्ति सुजाता अपा, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपणको मध्य वेरी गुड आफ्टरनून, प्रति नमस्कार, जय जगन्नाथ। लिखिछन्ति टाटा स्टील परिवार तरफरु ओडिसावासीको प्यार भरा नमस्कार। निश्चिंत जणै दउछि आपणकर ओडिसावासीको आपणकर प्यार भरा नमस्कार। लिखिछन्ति अपा, वर्षा पागरे आमे ऑफिस रे वर्षा भिजा सॉन्ग सुनुचु ओ खाई बसीचु। अपा, दुनिया को आमे मानव जन्म नै आसीचु किछि भलो काम करिबा, समस्त को भलो काम रे सहाय्य करिबा, आमे भलो कथा चिंता करिबा, परोपकारी रे सहाय्य करिबा, ए सबु चिंता करिबा एकमात्र भलो भलो। लिखिछन्ति अपा, आमो टाटा प्लांट को केबे बुलिबा को आसंतु, आमर एठी वर्षा लागि रहिछि। मेसेज करछन्ति आवासेन, राजकुमार भरद्वाज, बिमल श्रीवास्तव, मनी शर्मा, अलिसा अपा, तमन्ना रेड्डी, टाटा स्टील प्लांट रो। आपणकर सुंदर मतामत पई आपण।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल

0: क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाए। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम।

0: डिस्पेंसरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाएगी। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाएगी, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज हेबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

विजय सुंदर सा आफ्टरनून को आपन को समस्त को स्वागत ट्यून को छंदी निजो फेवरेट एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटे तसी तदाक आर विजय छे शो सुरीला आफ्टरनून नाउ सुरीला आफ्टरनून को वेलकम करू छी मो आपन को रेनबो साथी सुभ

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से तदाक बहुत वांछ हो चली छी सोरेला आफ्टरनून और सोरेला आफ्टरनून सहित मु अछि आपन घरे बो साथी शुभश्री आज आपन को साथी रे बर्षा दिन कहा को भारी पसंद थाए तो पुणी कहा को पसंद भी आसेनी कहा को बर्षा दिन भारी रोमांटिक लगे किंतु कहा को यही बर्षा दिन भारी चिड़चिड़ा भी लगे।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका आरजे चेतन। आज हम थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। बहुप्रतिभा सिद्धांत क्या है, आपके सीखने की शैली। बहुप्रतिभा सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है। किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रतिभाएं सूत्र रूप में रखी। उनकी सूची अस्थाई थी। पहली 2 को स्कूल में विशेष तौर पर महत्व दिया गया है। अगली 3 सामान्यतः कला से जोड़ी जाती है एवं अंतिम 2 वे जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तिगत प्रतिभा कहा।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। बहुप्रतिभा के प्रकार, दृश्य संबंधी स्थानिक प्रतिभा, दृश्य को समझने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोग चित्र के रूप में सोचते हैं एवं जानकारी को रखने के लिए इन्हें स्पष्ट मानसिक प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें नक्शों, चार्ट, चित्रों, वीडियो तथा फिल्म देखने में आनंद आता है। उनके कौशल में शामिल है पहेलियां बनाना, पढ़ना लिखना, चार्ट एवं ग्राफों को समझना, अच्छा दिशाबोध, स्केच बनाना, दृष्टि संबंधी रूप कलाकार, स्कल्प्टर या पेंटर बनना, प्रतिबिंबों में हेर फेर, निर्माण दृढ़ करना, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन, दृष्टि संबंधी प्रतिबिंबों व्याख्या करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां नाविक, शिल्पकार, दृष्टि कलाकार यानी चित्रकार।

अन्वेषक, आर्किटेक्ट, आंतरिक डिजाइनर्स, मैकेनिक, इंजीनियर्स, शाब्दिक। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट दोस्तों वी हैव शाब्दिक यानी बहुभाषा प्रतिभा, शब्दों तथा भाषा के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोगों में अंकेक्षण कौशल अत्यंत विकसित होता है तथा सामान्यतः ये शिष्ट वक्ता होते हैं। ये चित्रों के बजाय शब्दों में सोचते हैं। उनके कौशल में शामिल है सुनना, बोलना, लिखना, कहानी कहना, विस्तार से समझाना, शिक्षण, हास्य का उपयोग, शब्दों के विन्यास एवं अर्थ की समझ, जानकारी याद रखना, किसी को अपने विचार मनवाना, भाषा के उपयोग का विश्लेषण। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां हैं दोस्तों, कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, राजनीतिक, अनुवादक। मूविंग अहेड वी हैव तार्किक गणितीय प्रतिभा यानी वजह, तर्क एवं संख्याओं के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने

कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, राजनीतिक, अनुवादक। मूविंग अहेड वी हैव तार्किक गणितीय प्रतिभा यानी वजह, तर्क एवं संख्याओं के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले तार्किक एवं संख्यागत तरीके से संकल्पना कर विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध बैठाना है। अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमेशा जिज्ञासु। ऐसे सीखने वाले कई प्रश्न पूछते हैं एवं प्रयोग करना पसंद करते हैं। उनके कौशल में शामिल है समस्याएं हल करना, जानकारी को वर्गों एवं श्रेणी में बांटना, परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए गुण सिद्धांत के स्थित कार्य करना, कारणों की लंबी कड़ी को लेकर अनुक्रम बनाना, नियंत्रित प्रयोग करना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न एवं विस्मय करना, जटिल गणितीय गणनाएं करना, ज्यामितीय आकारों के साथ कार्य करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, शोधकर्ता, लेखापाल, गणितज्ञ।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव दैहिक यानी इंद्रियगत प्रतिभा, शारीरिक हलचल एवं वस्तुओं को दक्षता पूर्वक पकड़ने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले अपने आप को हलचल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन्हें संतुलन एवं हाथ से आंख के समन्वय का अच्छा बोध होता है। उदाहरण के लिए गेंद खेलना, बैलेंसिंग बीम्स। अपने आसपास की जगह के संपर्क में ये जानकारी को याद एवं प्रसंस्कृत करने में सक्षम होते हैं। उनके कौशल में शामिल है नृत्य, शारीरिक समन्वय, खेल कूद, स्वयं द्वारा प्रयोग, शारीरिक भाषा का उपयोग, कला, अभिनय, हाथों का उपयोग कर रचना, शरीर के माध्यम से मन के भावों को व्यक्त करना। करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों, एथलीट, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, नर्तक, अभिनेता, कारीगर। मूविंग अहेड वी हैव संगीतज्ञ ताल ग्रही प्रतिभा, संगीत के निर्माण एवं प्रशंसा की क्षमता। संगीत में रुचि रखने वाले ऐसे विद्यार्थी ध्वनि, ताल एवं पैटर्न के रूप में सोचते हैं। वे संगीत में जो भी सुनते हैं उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह प्रशंसा हो या आलोचना। इनमें से कई विद्यार्थी पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए झिंगूर, घंटिया, नल से टपकता पानी। इनके कौशल में शामिल है गाना, सीटी बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, स्वर लहरी पहचानना, संगीत रचना, मेलोडी याद रखना, ताल एवं संगीत का ढांचा याद रखना। करियर के लिए संभव मार्ग है वादक, डिस्क जॉकी, गायक, संगीतकार। अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा, अन्य को समझना एवं संबंध स्थापित करने की प्रतिभा। ये विद्यार्थी बातों को अन्य लोगों के नजरिए से देखते हैं, ये समझने के लिए कि वे क्या सोच रहे हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं। इनमें अक्सर भावनाओं, इरादों एवं उत्प्रेरणा को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है। वे बहुत अच्छे समन्वयक होते हैं, हालांकि कभी कभी वे गड़बड़ का सहारा भी लेते हैं। आमतौर पर वे समूह में शांत बनाए रखने की चेष्टा करते हैं एवं सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। वे अन्य से संवाद आरंभ करने के लिए वाक जैसे कि बोलना एवं अवाक जैसे कि नजर मिलाना, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। उनके कौशल में शामिल है दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना, दोहरे परिप्रेक्ष्य, समानुभूति का उपयोग करते हुए अन्य लोगों के मूड और भावनाओं को समझना, समूह के साथ सहयोग, लोगों की मनोदशा, प्रोत्साहित एवं इरादों पर ध्यान देना, मौखिक रूप से और गैर संचार मौखिक रूप से संवाद करना, विश्वास का निर्माण, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष सुलझाना, अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना।

करियर के लिए संभव मार्ग है परामर्शदाता यानी काउंसलर, विक्रेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी। तो दोस्तों ये थी थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आज का लम्हे प्रोग्राम यही संपन्न होता है, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲମ୍ହେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍।

0: 아니 까이 가우 티와 नमस्कार मु संतोष मल्लिक महाकालपड़ा भरतपुर को जिला जाजपुर मु रेडियो मास्टर को
1: स्वागत करछि आपन को डालिन लाइव चिटचैट को
0: कौन तू
1: आज रो टॉपिक ऊपर साथी कौन कहिबे
0: आज जो टॉपिक रखी तंती मा हाथ रंधा
1: आज्ञा
0: जो मा हाथ रंधा कथा कौन कहि मा तो जा हाथ रांधिले सब अमृत आउ मा हाथ रंधा कथा कौन कहि मो माँ भारी भल करती चूना माथ बेसरा आज स्वादीन भरी कसा बहुत बढ़िया करती भल करती मुझे कहले सी मत कर
1: पिठापणा कौन आपको बेस भल लगे माँ का हाथ रंधा
0: पिठापणा भितर मत मंडा पिठा भल लगे आगे सरु चकुड़ी थे चिकेन फिकेन
1: बहुत बढ़िया नमस्कार

0: हेलो दीदी नमस्कार
1: नमस्कार शुभ संध्या मु तो जानी गली आपन को परिचय तबे आपन आम श्रोता बंधु मान भी आपंकर से एनर्जेटिक भॉइस रो निहाती आपंकर परिचय जानी पारथिबे तबे कहंतु आपनको आपनको मांको क्यों हाथ रंधाटी भारी पसंद आसे
0: मते हाथ रंधा सब से जहा करे भी मते भल लगे हेले बेसी मते भल लगे घंटो दरकारी तापर गोटे कोबी रे मंडा करे बंधा कोबी रे तो सेइटा भी भल लगे आउ बंधा कोबी रे पियाजी भी मते भल लगे आउ एंती मटन चिकन जहा भी रांधे भल लगे हेले गोटे प्रॉब्लम जदि अत्यधिक टिके प्रशंसा कर दबो ता पर घर भी जतले करियो काई सब गड़बड़ कर दिए
1: एटा यूनिक जिनस थिला आपन को तो सुनिवा को मिलिला
0: आज्ञा सेत भाई हम को जतले हम पचारे मु सेतले को हो चिकचा को अछि खाइ देला तो वाला एटा
1: को ता माने आपन बेसी प्रशंसा करंतिनी
0: के माने जत्ते पचले मु एटा एया ही कुए आड यदि अधिक प्रशंसा करि कबि ओ बढ़िया आइ जी
1: आ
0: हाथ से जाटी खाइ देवा को इच्छा हो जी एंती यदि कहबि ता पर धर गुटिए गड़बड़ कर देबो सेत भाई मु एटा मन रे रखी करी ताको बेसी किछि प्रशंसा करे ना भल होइ छि खाली कुए
1: अच्छा आपन यदि बेसी प्रशंसा न करंती पर मुहूर्त रे जेते बेले से आइटम बनांती से सब ठीक ठाक ही हुए
0: हां सब ठीक ठाक छै काहे ना मते लागे जदी अत्यधिक प्रशंसा मु कर दउ जी माने मामा पर खुशी रे हो तो भलो हो जी आउ करिवा आउ
1: अच्छा
0: एमती करि तडर मते ठीक गड़बड़ आइ आउ जी एमती कोन होए ना मु हां ठीक ठाक अछि कहले सेती आउ ठीक भलो करिया को चेष्टा करे
1: अच्छा आपन को मामा अभिका आपन को कथा सुनु थिबे निहाती मामा एते परिश्रम करके भल भल डिश तैयारी करुछंती प्रशंसा निहाती करिबा दरकार तबे जेमती कहिले

0: हेलो
1: हेलो हेलो दीदी
0: नमस्कार किए कहते कौट कल करते
1: नमस्कार जय जगन्नाथ
0: जय जगन्नाथ
1: संतोष बेहरा कंसुल आठगढ़
0: स्वागत कर डायलिन लाइव चिट चैट को
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार किए कहते कौट कल करते
1: हाँ नमस्कार मैडम
0: नमस्कार किए कहते
1: पुरी जिला निमापड़ा दिवार
0: आज्ञा किए कहते निजर परिचय टिके दियंतु
1: पार्वती महांती
0: स्वागत करछि आजर डेली लाइफ को
1: धन्यवाद
0: केमिति अछंती
1: भलो अछि आपन केमिति अछंती
0: मु भी बहुत भलो अछि खुशी रे अछि
1: बन्दा बहुत सारा भी चेष्टा करू छी सकाळ के टाइम न चेष्टा न उठा दउ छी चेष्टा करू छी तथापि फोन लागुनी
0: देखो तो आज आपन को फोन लागी जाय छी चेष्टा आज सफल होई छी
1: एबे भी ठाकुर मंदिर केमिति लागी गेला तबरे भी गुरुवार दिन 5टा रे टाइम भी फोन करथली
0: आज्ञा
1: आ झियो भी फोन करू छी चेष्टा करू छी से भी कथा बोली होउ छी
0: धन्यवाद
1: गीत भजन अधिक छाड़े भल
0: लगता
2: हेलो मैडम नमस्कार
0: नमस्कार शुभ संध्या गुड इवनिंग किए कहते निजर परिचय टिके दियंतु अच्छा आपण जो अमर कुनी लिस्नर आपण को ना टिके हम जानिबा पई चाहुचो
2: माना पूर्णिमा महांती
0: अच्छा वेलकम करू छी आजरा अमर शो को

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: GST काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सर

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, चूंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

0: শুনিলে গোস্বামী তুলসীদাস অভিষিত শ্রীরামচরিত মানসর ৬৮তম ভাগ টিউন কর 100.4 আকাশবাণী এফএম রেইনবো কটক তেলসি তেলতাক বর্তমান আসন্তু শুনবা সংস্কৃতরে সম্বাদ আকাশবাণী দিল্লি রো
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রুয়ন্তাম প্রবাচকঃ যতিন শর্মা आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान् केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान् अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्
2: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है साथियों ये मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार को नई गति देगा
1: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान् अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शतकस्य शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जासंकटः समुत्पन्नः किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम् सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2,000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं 3,000 रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते 300 रूप्यकेषु एव सुरक्षितम् अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघुनगराणां सुदूरक्षेत्राणां च कृते वैमानिक सम्पर्कः अधिकः सुदृढः

केन्द्रीय मन्त्रिणा प्रह्लाद जोशिना लेखं प्रकाशयन् श्री मोदी अवदत् यत् सम्बद्ध पक्षैः सह व्यापक मन्त्रणायाः परं ई जागृति मञ्चः परिष्कृतः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूलं वर्तते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया टी20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। भारतीय समयानुसारं क्रीडेयं अद्य सायं 7 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाएगी। बस, ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाएगी, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट्स सप्लायर को समस्या कम हो जीव तथा सप्लाई चेन सहज हेबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाई नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

GST Council Commercial Business रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाए छी। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाए छी, जहां पूर्वरु 28% थिला। HS कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती GST दरर लाभ उठाई पारिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

साथी माने लिखुछंती जे आज तांको ऑफिस स्टाफ अभिषेक शर्मा हैप्पी वाला मैरिज एनिवर्सरी और सिथि पई तांको जणै छंती बहुत सारा शुभकामना और शुभेच्छा। तबे निहाती आपणकर ऑफिस स्टाफ अभिषेक सर को आम तरफ मध्य एनिवर्सरी उपलक्षे मैरिज एनिवर्सरी उपलक्षे ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर ए वर्षटी बहुत ही भलरे जाओ आपण एमती सुखर संसार करथांतु। तबे साथी माने आउ भी लिखिछंती दुनिया पई पदे जो मिला ना सका उसका इंतजार क्यों है, जो मिल रहा है उससे इनकार क्यों है, बड़ा मुश्किल है समझना खुद को, जिसे फिकर ही नहीं हमारी उसके लिए इतना प्यार क्यों है। तबे साथी माने गुड इवनिंग जणै छंती टुना भाई, रमेश भाई, उर्मिला अपा, मुना भाई, विजय भाई, चांद भाई को गुड इवनिंग जणै छंती। साथी आपनको गुड इवनिंग पहुंचे देली आपनकर प्रियजन मानन को पाखरे। तबे आपनको बहुत-बहुत धन्यवाद आपन हम कार्यक्रम रे शामिल हेले, निजरो गुड विशेस समस्तन को सहित शेयर करथ पर बहुत-बहुत धन्यवाद।

बातें बता जाती हैं आंखें, धड़कनों को जगा जाती हैं आंखें। दिल पे चलता नहीं जादू चेहरे का कभी, दिल को तो दीवाना बना जाती हैं आंखें। उनको छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। स्टूडियो घंटे समय वर्तमान राति 8:04 आउ यह सहित आरंभ हो जाए शो गीतर मितर आ मु अच्छी आपण रेनबो साथी शुभश्री आज आपण साथी।

आंखों में जो गहराई है वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक नजर जो पड़ जाए मुझ पर, दिल का संभलना फिर जरूरी है।

आंखों को आराम और दिल को सुकून चाहिए। हाथों में तेरा हाथ और सामने हमेशा तू चाहिए।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ଡି ଓ କଟକ ଦେଶୀ ତାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ ଚାଲିଛି ଗୀତରେ ମିତରେ तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी हर बात को दिल से माना है मैंने। तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत है, तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत है, तुझ में ही अपना सब कुछ पाया है मैंने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए

0: टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के

कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ

0: मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20.

रेनबो एक्सप्रेस परवर्त सृष्टि कर विजय कुमार दास सस्मिता दास मामुनी पूजा एवं चुमुनु सौरी महासिंहपुर बहुग्राम कटकरु नेक्स्ट में सृष्टि कर भाटापड़ा छत्तीसगढ़ रो हीरामणि बर्मा पारसमणि बर्मा पुष्पेन्द्रमणि बर्मा एवं नोखेलाल बर्मा एमे सृष्टि कर दाड़तोला खोर्धारु संतोष कुमार साहू पहुंचे साथी आपण मानक पसंद र गीत बैक टू बैक

0: वर्तमान अचंतु सुनिबा हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में

0: प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक
2: आपण माने कार्यक्रम सुनु छन आकाशवाणी कटक केंद्र रु
3: राती 11:05 रो मुख्य संवाद सह म महेंद्र कुमार माझी आसंता 20 तारीख रु संसदर मौसमी अधिवेशन अगस्त मास 13 तारीख पर्यंत हे अधिवेशन चलिबा नै संसदीय व्यापार मंत्री को सूचना सरकार को सह आलोचना परे डाक्टर आंदोलन स्थगित डाक्टर मन आज ठरु कार्य रे जोगदेबा नै निष्पत्ति पूरी श्रीमंदिर गर्भगृह वैषयिक जांच आसंता 18 तारीख रे अनुष्ठित हेबा नै श्रीमंदिर प्रशासन रो निष्पत्ति राज्यर विभिन्न स्थान में वन महोत्सव सप्ताह पालन अवसर में चारारोपण कार्यक्रम जारी 2025-26 रबी ऋतु में धान संग्रह लक्ष्य पूर्ण होइछि कहले समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्देश क्रमे आसंताकाली स्वतंत्र सघन संशोधन 2026 उपलक्षे प्रकाश पाइब चिठा भोटर तालिका राज्यर विभिन्न स्थान में आसंता 2 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात सानंद 7,500 कोटी टंका विनियोग सेमीकंडक्टर ओसाट सुविधा उद्घाटन करते राजस्थान गस्त अवसर में 1,00,000 कोटी टंका ऊर्ध व्यय विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास कले प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया देखादेव संकट सत्वे देश चलित शताब्दी अतिक्रम कर बृहत शक्ति संकट कहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद मुंबई हाईस्पीड रेल करिडर 2029 सुधा संपूर्ण होबा नै घोषणा कले रेलमंत्री वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आसंताकाली 10 तारीख जाए कतार बाहरीन क्वेत और ओमान गस्तर जिबे एवं द्वितीय T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे इंग्लैंड 4 विकेट रे विजयी भारत प्रथम बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर 7 विकेट हराई 190 रन संग्रह पीछा करी इंग्लैंड दल 19 ओवर 6 विकेट हराई 191 रन संग्रह करी विजयी होईछे मुख्य संवाद आज पे यतिकी नमस्कार।

0: हेलो हाय नमस्कार।
1: कोहला पाग करिछि, वर्षा पाग करिछि, कोठि कोठि वर्षा छाडी जाइछि आ कोठि कोठि छिप छिप वर्षा चलिछि। राती सारा बहुत वर्षा हेछि। ए वर्षा भेजा पागरे निश्चित रूपरे आपण मानको बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन। वर्षा होछि सिना आपण माने किंतु जम्मा अजथरे काम न थिले वर्षारे ओदा हुंतु नाही, भिजंतु नाही, देह खराब हबार संभावना रहिछि। तेणु सतर्कतार सहित आमे जदि जीवन अतिवाहित करिबा तेबे आमे सुस्थ रहिबा। आमे सुस्थ रहिले सब काम करिबा पई आमर इच्छा आग्रह ए सब मध्य रहिबा। तेणु जदि काम नाही बा कोनसे कामरे निहाती भावरे आपण मानको बाहरिबाकु पडुछि, सांगरे छत्ता बा रेनकोट निहाती भावरे नियंतु एवं वर्षा को एडीबा पई, वर्षा को अवॉइड करिबा पई जहां जहां प्रिकॉशन नबाकु पडिबो से सब नियंतु। अजथा काम न थई वर्षारे भिजंतु नाही, ओदा होंतु नाही, अजथारे बाहर को बाहरंतु नाही, वर्षार मजा नियंतु। आ ये वर्षा समय रे सुनु थांतु 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो अटैक दिल से दिल तक को।

0: तुम सब रिपोर्ट देखे एचआईवी टेस्ट है
1: नहीं डाक्टर बाबू सेटा कौन निहाती जरूरी
2: आज्ञा हाँ गर्भावस्था रे प्रत्येक महिला निजर एचआईवी परीक्षा करैनी अजना आतंक ठो दूरे रहंतु
3: जदी रिपोर्ट पॉजिटिव आसे ताले उपयुक्त चिकित्सा जरिया रे निजे तथा शिशु उभय एड्स भली मारात्मक रोग को प्रतिरोध करंतु
2: मनि रखंतु एई परीक्षा एवं चिकित्सा निकटस्थ सरकारी डाक्तरखाना रे थिबा आईसीटीसी केंद्र रे मागणा रे उपलब्ध
3: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1097 सह जोगाजोग करंतु
2: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित रे जारी।

वेलकम बैक ट्यून करी छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे मॉर्निंग मेलोडी आरंभ हे जाय छी। एई मॉर्निंग मेलोडी को पुनी थरी निश्चित तरफ रु आपन मन को सुस्वागतम। जेते जहा भी हो ना कहे के टाइमली गोटे काम आरंभ करबा ओ टाइमली सारिबा ए भीतर गोटे प्रकार पॉजिटिव थॉट्स मध्यम भरी कि रही थाए। आपण जदि ठीक समय रे सकल उठुछंती ठीक समय रे नित्यकर्म सारुछंती एंड आपणकर प्रोफेशन जहा छि सी प्रोफेशन को ठीक टाइम रे बाहरी जाउछंती देखिबे आपणकर मानसिक स्तर रे मध्य उन्नति धीरे धीरे घटिबो। जदि सबबेले आपण लेट रे अछंती ताहेले विरक्ति भाव प्रकाश पाइबो चिड़चिड़ हेबे कौनसी काम ठीक रे हबनी केतबेले खाइथिबे केतबेले न खाइथिबे केतबेले कौनसी जिनस भूली जाइथिबे ए सब दैनंदिन जीवन रो गोटे सारणी। बेले बेले कौन हुए आम जिते पूर्व प्रस्तुति हौ ना कहीं पर्टिकुलर से मोमेंट रे आमे किसी ना किसी जिन भूली जाइ जो आमको टेंशन नवा को पड़े विरक्ति हवा को पड़े चिड़चिड़ हवा को पड़े तेणु ठीक जगार ठीक जिनस आवश्यक जिनस जदि आम सजाड़ी कर साइति कर रखि ए सब समस्या आम ओहरी जापर मुक्त हो पार नुह कि सेथिपाई तो मुझे निजक एकदम रिलैक्स मोड रे सबबेले रखंतु जिते भी परिवेश परिस्थिति खराब हो ना काहेकि आपण किंतु निजक सबबेले शांत धीर स्थिर आउ मनकु प्रफुल्लित माने हस हस मुहरे जीवन जीवा पई चेष्टा करंतु।

0: जय जगन्नाथ नमस्कार।
1: नमस्कार नारायण भाई।
0: रेडियो लवर तथा अंतर्जातीय रेडियो श्रोता नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला गंजाम।
1: कौन कहे टॉपिक संपर्क
0: आज्ञा देखते जीवन तो कंटकित मुझे मो जीवन अनेक दुख कष्ट धड़धंदा सही बहुत रास्ता अतिक्रम कर तेणु बेले बेले मत रास्ता कोवर्तन करा पड़ता है। देखे गोटे रास्ता मो खराब अनलक होता है रास्ता खोजे कहीं रास्ता खोजा द्वारा आम किसी नुआ रास्ता पाइबा और सफल हो पार।
1: खोजा निश्चित भाव नुआ रास्ता खोजा गतानुगत धारा टी बदल दरकार जीवन रनंद ठीक अच्छे। बहुत सुंदर कथा कहले मतामत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो बंधु सबुबले गोटे रास्त ठीक नुहे बेले बेले परिवर्तन लोड़ा से परिवर्तन सहित निजको खाप खाई मध्य आमको चलवाक पड़ो नुआ कर किछि करबाक पड़ो तेबे जाई किछि परिवर्तन घटिबो आ नुआ नुआ किछि आनंद मध्य पाई परिबा। तो परवर्ती कलर कौन कहते देखा आज टॉपिक को नहीं जीवन रास्त धराबंधा गतानुगत पथर जावा ठीक ना बेले बेले निज पाई अलग रास्ता बाछिबा ठीक कौन कौच देखा परवर्ती कलर किए कौन कौट कौन
2: आज्ञा
1: नमस्कार जगत सिंहपुर स्वागत कर टॉपिक संपर्क
2: धन्यवाद टॉपिक कह आगे हाँ आम गतानुगतिक रास्त चली देखा जदि आम देखु कौ रास्ता आमको सफलता दब तेणु अन्य किए कौ रास्त जाऊक नकल करवानी नकल कले तो आम विफल हो पार कितु चेस्टा कर जो क्षेत्र में सफल हो पार से मार्ग टा को आम अनुसरण करवा उचित अन्य जन कौन करा करी फल तो मुझे विफल हो पारे तेणु आम देखा आम जो थे सफलता पाइबा से ही अन्य रास्ता टा को बाछले आम हूं तो आगको कि गोटे उन्नति आम हो पार गोटे रास्त गले हबनी गतानुगतिक रास्त जा भी आम देखु अन्य कौ रास्ता आम भल अच्छी जाए भविष्य में उन्नति कर
1: खूब सुंदर कथा कहले मतामत बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
1: तो बंधु शुणिले ममता भाई कहते प्रकृत में गतानुगत रास्त जावा किंतु बेले बेले नुआ किछि करिबा सुजोग सुविधा देखि नुआ रास्ता टिए बाछिबा जो रास्त आम जावा अन्य माने मध्य चलिबा ता गोटे मार्गदर्शन हो पार ना कौन कहते परवर्ती कलर आपण कौन कहे आपण को मत को नहीं जीवन रास्त धराबंधा गतानुगत पथर जावा ठीक ना बेले बेले निज अलग रास्ता बाछ ठीक कौन कौन देखा परवर्ती कलर किए कौन कौट कौन
3: हेलो सर नमस्कार मु प्रकाश चंद साहू भुवनेश्वर सालिया साहू कहू सर नमस्कार सर।
1: नमस्कार प्रकाश भाई कार्यक्रम स्वागत कर टॉपिक संपर्क रे
3: देखंतु मु 2003 रे जेतले आस्तिनी आम सड़ू होटल रे मु थिनी 1200 टका दरमा रे थिनी

100.4 आकाश बने एफएम रन पकड़ दिल से दिल तक आपण छने जयदेव साथरे बे समय जाय छे सुनिबा आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम रेनबो एसएमएस जेंतरे आपण माने निज पसंद रे गीत सुनिया पय हमको एसएमएस माध्यम रे अनुरोध कर परिबे गीत सुनिबा को अनुरोध करिय के चाहतले आपण को मोबाइल टाइप करन तो एफएमआरसी स्पेस दंत निज ना लिखन तो ठिकाना लिखन तो आपण चाहतवा गीत रे फर्स्ट लाइन लिखंतु आउ सही गीत क्यों फिल्म बा आलबम रे ता ना लिखे आम निकट को पठाई दियंतु आम नंबर है 09495963210 आउ व्हाट्सअप करबा नंबर है 8895254200 आउ तर करू छी एसएमएस

आपण मानकर अनेक गुडे एसएमएस मो घरे पहुंचि गलानी आपण मान अनुरोध थर धारा लंबी लंबी चली छि चिट्ठा लंबी लंबी चली छि परवर्ती गीत रे छुनिया को चाहि चंती सेक्टर 11 सीडीए कटक रु उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर जयदेव भाई नमस्कार सब स्टाफ मान को नमस्कार आज समस्त कार्यक्रम उपस्थापना कथा गीत सब भल थिला तो आपण को साधुवाद तो सुनई दंतु आमको आम रिक्वेस्ट गीत सुनई दउछि आपण को अनुरोध रो गीत टी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: चुनचुनी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कट दिल से दिल तक कार्यक्रम चलते रेनबो एसएमएस आपण कौन रो थर के तरह कार्यक्रम परवर्ती के तरह सुनिबा के चाहिं चंती। छत्तीसगढ़ रो अच्छी मैसेज टी देचनी दतरंगा भाटपाड़ा, छत्तीसगढ़ रो हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा एवं नुखलाल वर्मा सुनि दुचु आपण का अनुरोध रो एक तटी।

सो चली जी कलाकार आउ कलाकार आज हम कथा हेउ जे बॉबी देवल को विषय रे बॉबी देवल का रियल नेम हैला विजय सिंह देवल से एमते एको फैमिली रु आसी चंती जेउ ठारे अभिनय तांकर रक्तरी मिसी छी बापा धर्मेन्द्र आउ बड़ भाई सनी देवल को सफलता परे निजर एक स्वतंत्र परिचय गढ़ा एत सहज नाला किंतु 1995 मसीह बरसात फिल्म रो नायक भाव डेब्यू करी से अनेक दर्शकों हृदय जीति जाते

ट्यून करी चंते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक ए दिल से दिल तक सफर रे मु अछि मोनालिसा आपण मनन को साथ रे साथी गीत सुनिबा को हम समस्तन को बहुत भल लागे आ से गीत जदि टिके पुरुणा थाय न से गीत रे जहां सब मेमोरी थाय हमर बहुत सारा मेमोरी ता जाय जाय तबे साथी सुनि देउची से हिंदी फिल्म रो किछि एवरग्रीन सॉन्ग खास औ खास आपण मनन को पाई तबे सुनु थांदु आ कहु थांदु दिल से दिल तक

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक टॉक भी ट्यून भी सब किछि गोटे सोरे फुल एन मस्ती फुल अप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन किछि कथा किछि गीतरे आ मु अछि मोनालिसा आपण मनक साथी रे आज हमे ढेर सारा कथा आबा गीत मध्य सुनिबा किछि कथा किछि गीतरे लाइफ टा गोटे डायरी जोठी लेखा हुए प्रत्येक दिन गोटे गोटे न्यू स्टोरी हृदय सब अकुआ कथा को केतो बले कही हुए तो पुणी केबे अधरे रखी जाए हाँ सती ए मनटा पूरा सेमती ए मनरे भरी रही जे खुशी रंग केबे लुहर दाग तो पुणी केबे प्रेमर रंग साथी चलत ना आज से दिल डायरी पृष्ठा को पुणी थे लेटेबा कि मनर कथा शुणा आउ कि गीत भरीदबा गोटे सुंदर अनुभव तेज शुणी दौर गीत शुणु गीतर ताले ताले पूरा झुमि जाता

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
4: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसकी रिलेवेंसी क्या है।
3: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
4: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
3: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।